जब संब कर मदम माजो भर गए मामच गर्म बार आया मिनट गर्मी दिपे माम अगर दुखा दर समाज